लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना और आइए अब सुनते हैं बेगम अख्तर का गाया मिर्जा गालिब का ये कलाम।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए विशाल मिश्रा का गाया ये ओगा फिल्मी गीत। इसे लिखा है कौशल किशोर ने और धुन बनाई है विशाल मिश्रा ने ही।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं समीर का लिखा ये अगार फिल्मी गीत, आवाजें ऋचा शर्मा और साबरी बंधुओं की।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं मिर्जा गालिब का ये कलाम।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने मिर्जा गालिब का ये कलाम सुना, और आइए अब सुनते हैं संत नानक देव का ये शब्द। गायिका हैं दिलराज कौर।

0: जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम में अब सुनिए आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। इसे लिखा है रोचक कोहली ने।

ये स्वर था आयुष्मान खुराना का और आइए अब सुनते हैं तनिष्क बागची का लिखा और संगीत बद किया हुआ ये गैर फिल्मी गीत आवाजें गुरु रंधावा और निकिता गांधी की।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज में कुणाल वर्मा का ये गीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह आवाज है असलम साबरी की।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस सभा में, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है दोस्तों। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं मशहूर यानी जाने माने संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम दिल की राहें, गीतकार नक्श लाहिलपुरी।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म दिल की राहें का ये गीत सुना। गीतकार नक्श लायलपुरी और संगीतकार मदन मोहन थे। आइए अगला गीत सुनते हैं। इसे लिखा है राजा मेहदी अली खान ने, स्वर लता मंगेशकर का, और फिल्म का नाम वो कौन थी।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनिए, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी अपनी फिल्म शराबी का ये गीत सुना। आइए इसी आवाज में अगला गीत फिल्म नौनिहाल से हम आपको सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार मदन मोहन।

0: उसकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और आशा भोसले को, फिल्म का नाम है जहां आरा, रचना राजेंद्र कृष्ण की और धुन मदन मोहन की।

लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में यह था फिल्म जहां आरा का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ, मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म हंसते जख्म से हमने लिया है।

0: फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है.
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
2: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है दस्तक.

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है महाराजा।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी अपनी फिल्म महाराजा का ये गीत सुना। गीतकार थे कैफी आजमी। और आज इस कार्यक्रम में हमने आपको मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत सुनवाए। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

तो प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी तो बताइए श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है जिंदगी का सफर? अच्छा चल रहा है ना? आहा, कभी कभी नाव हिचको लिखा जाती है ना? कोई बात नहीं, यही तो जिंदगी का असली सफर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सफर कैसा होना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप यही कहेंगे जो मैं कह रही हूँ कि सफर तनाव मुक्त होना चाहिए, रोमांचक होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और साथ में एक प्यारा सा हम सफर भी होना चाहिए ताकि जिंदगी बहुत मजे से निकल जाए, क्यों है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर, क्योंकि इधर हम हैं और उधर आप, और मिलकर ये प्यारा सा सफर हम आज तय करेंगे। तो चलिए आज चलते हैं समुद्री यात्रा पर, नौका विहार करते हैं। डरिए नहीं भाई, आज के समय में भी समुद्री यात्रा खास तौर से आज के समय में काफी सुरक्षित और आसान हो गई है और ये यात्रा करना बहुत रोमांचक हो जाता है। एक शानदार अनुभव हमारी जिंदगी से जुड़ जाता है। नीला पानी, ताजी हवा और प्रकृति की विशालता का एहसास होता है हमें। बस थोड़ा सा मानसिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ता है। तो चलिए हो जाते हैं तैयार और चलते हैं आज नौका विहार पर, है ना? तो आप हमारा इशारा समझ गए हैं कि आज इस कार्यक्रम में हमने वही गीत चुने हैं जो नावों पर फिल्माई गई हैं और इन गीतों में मुख्य रूप से रोमांस, आशा या अपने प्यार की तलाश जैसा भाव छुपा है। तो जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो अपने विचार लिख दिए हैं और खुशी की बात यह है कि आज बहुत सारे गीत आपकी पसंद और हमारी पसंद के मेल खा रहे हैं। हाँ, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, हमारे परिवार में शामिल होना चाहते हैं, वो www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर अपनी बात हमें लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नौका विहार।

नौशाद साहब की संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। फिल्म का नाम था उड़न खटोला। भाई आज तो इस नौका यात्रा पर हमारे बहुत सारे श्रोता शामिल हो गए हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत बड़ी नाव लेकर चलना होगा क्योंकि बहुत सारे श्रोता आज जुड़ गए। तो चलिए इस नौका यात्रा पर जब हम निकल ही गए हैं तो डरना कैसा है ना भाई। ध्यान से रहिएगा, डरिएगा नहीं। सब अपनी अपनी भूमिका अच्छे से तय कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज का ये पैराग्राफ मुख्य रूप से जो आपने लिखा है यानी मैंने जो इबारत लिखी है दार्शनिक और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ी है जिसे काव्य और मनोरंजक शैली में पिरोया गया है। इसमें जीवन के उतार चढ़ाव को एक यात्रा के रूप में दिखाया गया है और आप लिखते हैं कि इसमें प्रमुख भावनाएं शामिल हैं वैराग्य, स्वीकृति, जीवन की अनिश्चितताएं और भी बहुत सारी भावनाएं, सहजता से स्वीकार करने का भाव, कठिन परिस्थितियां, तूफानी यात्रा में किसी योग्य गुरु मल्ला या आध्यात्मिक ज्ञान की जो हमें तलाश करनी होती है उसके बारे में भी इस इबारत में आपने लिखा है। तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कही है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी की इस नैया को पार लगाने के लिए हमें न जाने कितने तूफानों का सामना करना पड़ता है। सुख दुख के थपेड़ों के बीच जब हमारी ये नाव डगमगाने लगती है तब दिल किसी मझधार या भंवर में फंसावा महसूस करता है। ऐसे वक्त में जब दूर दूर तक कोई किनारा दिखाई न दे तो उम्मीद का दामन थामे रहना ही समझदारी है। इस जीवन रूपी कठिन यात्रा में सही राह दिखाने के लिए हमेशा एक कुशल मल्लाह यानी मांझी या सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो इस कश्ती को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा सके।

जी तो हमारे श्रोता जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम आज की इबारत भी बता दें। हमने एक छोटी सी इबारत आपके लिए लिखी है जिसे आप आसानी से समझ सकें और अपनी बात लिख सकें। हमने आज लिखा था कि जीवन रूपी नैया और हमारा ये जीवन का भटकाव हमें ये बताता है कि जिंदगी के सफर में हम ता उम्र भंवर यानी मझदार में खुद को फंसावा पाते हैं। जीवन रूपी सफर में जब कोई किनारा नजर न आए तो हर पल को स्वीकारना ही इस नैया को पार लगाने जैसा होता है। जब भी जीवन रूपी नाव डगमगाए तो जान लीजिए कि इस तूफानी यात्रा को शुरू को पूरा करने के लिए एक योग्य मल्लाह या आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये आज की इबारत थी जिसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमारे द्वारा चुने गए गीतों से मेल खाता हो। आज हमने वो शब्द नहीं रखे ताकि आप श्रोता थोड़ा सा सरलता से गीत चुन सकें, इसीलिए आप सबकी खातिर हमने आज थोड़ा सा इस इबारत को इस रूप में रचा और एक शब्द नैया जिस पर आज हमने कार्यक्रम

बहुत पसंद करती हूँ। वैसे तो आपने बहुत सारे गीतों को लिखा है, लेकिन आप जो बहुत गीत को पसंद करती हूँ और आपकी नजर में वो गीत बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माया गया है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करती हूँ कि मैं अपनी बात करती हूँ कि फिल्म कश्मीर की कली का गीत जो है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा तो वो गीत जो है मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि डल झील श्रीनगर की जो हसीन वादियों में शिकारा पर फिल्माया गया गीत है और शिकारा की जो धीमी गति है और बैकग्राउंड में आपने देखा खूब सारे जो है कश्मीरी हाउस बोट्स रखे हुए हैं और वो अपनी बारीक हस्तशिल्प कला के एक शानदार नायाब नमूने हैं। तो कितना सुंदर समा लगता है इस गीत को सुनने के बाद, देखने के बाद। और शम्मी कपूर साहब के तो कहने ही क्या, जब वो जिस एक झटकते अंदाज में अपनी बात कहते हैं। तो इस तरह से आपको भी कोई गीत पसंद होगा उसका जिक्र करें। चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर। आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की। ये फिल्म है सवेरा, गीतकार है शैलेंद्र और संगीत दिया है शैलेश ने।

अच्छा बताइएगा कि ये गीत फिल्माते समय आपको कौन से नायक और नायिका एक नाव पर बैठे दिखे, और साथ ही हमने आपको बताया था कि संगीतकार हैं शैलेश, ये संगीतकार कौन से हैं, इनका पूरा नाम क्या है, आपको ये भी बताना है।

तो ये था फिल्म सवेरा का गाना, आवाजी लता मंगेशकर और साथियों की थी। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शैलेश। इनका पूरा नाम आपको बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि ये गीत यानी ये गीत जो फिल्माया गया है इसमें कौन नायक और नायिका एक नाव पर अलग से बैठे हैं और बाकी दूसरी नावों पर एक कोरस गान हो रहा है जो कि अभी आपने सुना था।

एक श्रोता का कहना है कि जिंदगी तो एक नैया है जिस पर एक नाव को तूफानी दरिया में पार लगाने के लिए धैर्य, संतुलन और सही दिशा की जरूरत होती है। वैसे ही जीवन रूपी नैया को संभालने के लिए कुछ बातों का संतुलन रखना पड़ता है। जीवन में काम, परिवार और अपने व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे नैया पानी के बहाव के साथ चलती है, जिंदगी में उसी तरह दिशा रखनी पड़ती है और इन सबको संभालने के लिए धैर्य, सहन शक्ति की जरूरत होती है। जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाए तो घबराने के बजाय धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें, क्योंकि सिर्फ खेवैया है जो पार, तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। जीवन का ये सफर निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन चुनौतियों का सामना करने से ही अनुभव और मजबूती मिलती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि आज बहुत ही गहरी और दार्शनिक सोच के साथ गद्यांश को रखा गया है और सिर्फ एक शब्द नैया पर ही इसे सीमित कर एक बार फिर नई पहल की है। वैसे आपके नाम में भी नदी का रूप है। अरे वाह, क्या बात है, आपको हमारे नाम का अर्थ पता है। आपने लिखा है कि जिंदगी के जल भ्रम में जब जीवन नैया फंस जाए तब जीवन में आए इस तूफानों से विचलित न हो और विश्वास, साहस, धैर्य, सत्कर्म, सकारात्मकता और सच्ची श्रद्धा की पतवार थामे तुम अपनी जीवन नैया को खेते जाओ, तब भगवान केवट बनकर इस भवसागर में जीवन नैया को जरूर पार लगाइए। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रदत्त इबारत में संगीत में सुरीला सफर संजीवन भवसागर पार लगाने की महात्मय पर बखान है। सकारात्मक विचार को पतवार बनाकर जीवन नैया को खेते रहें। जीवन के ज्वार भाटा तूफानी थपेड़ों को सिर झुकाकर सामना कर जीवन नैया चलाते रहें। कभी भी यह सफर किसी भंवर में नहीं फंसेगा। सागर की तरह अपने आंतरिक तूफान को अपने तक हृदयंगम कर शांतचित रहना चाहिए। तूफान सामयिक होते हैं, स्थायी नहीं। नवकल्पना नए रूप की सुरीली सफर स्मरणीय होगी और क्यों न हो, स्वयं मंदाकिनी साक्षात संग चलेगी। क्या बात है, क्या बात है। और हाँ, हमारे श्रोता तो भाई बड़ी अच्छी बात लिखते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में अपनी बात कहते हैं। एक श्रोता लिख रही है कि आज तो बड़ी ही प्यारी इबारत के साथ आप आई हैं और हमें लग रहा है कि आज आप ही नाव में बैठकर आने वाली है। प्रोग्राम में अगर ऐसा है तो रास्ते में हमारा घर भी आएगा, हमें भी उसी नाव में बिठा ले रहा। इस बारे हम विविध भारती भी देख लेंगे और मुंबई शहर भी। हम इंतजार करेंगे, 1 बजे से पहले पहुंचना भी तो है। बिल्कुल सही कहा, हम नाव पर सवार ही हैं। आज हम सभी इस नाव पर और जीवन रूपी नैया पर तो हम वैसे ही भी सब सवार ही हैं, लेकिन हाँ, इस कार्यक्रम में खास नौका विहार पर हम आज निकले हैं, तो मजा लेते हैं इस नौका विहार का। और बताइए हमें कि भाई जो 2 गीत हमने आपको सुनवाए वो आपकी लिस्ट में शामिल थे कि नहीं। थे, मुझे पता है क्योंकि मैंने देख लिया है। लेकिन जिन श्रोताओं की लिस्ट में वो गीत शामिल नहीं थे तो कोई बात नहीं, नौका विहार का तो हम आनंद ले ही रहे हैं, है ना।

लता मंगेशकर और साथी थे, फिल्म का नाम था चोरी चोरी। हमारे दो सवाल आपने नोट कर लिए होंगे कि आप कभी किसी नौका विहार पर गए, बताइए उसके बारे में, कब गए, कहां गए और कैसा रहा नौका विहार। और हमारा दूसरा सवाल ये था कि नौका विहार पर फिल्माए गए गीत जो आज हम बजा रहे हैं या जो गीत फिल्माए गए हैं, वो आपको सबसे, जो आपकी पसंद का गीत है वो कौन सा है और क्यों पसंद है, उसकी फिल्मोग्राफी मतलब किस तरह से डायरेक्टर ने उस फिल्म को, उस गीत को फिल्माया है, उसके बारे में कम से कम शब्दों में बताइएगा। जैसे कि हमने आपको फिल्म कश्मीर की कली का उदाहरण दिया कि उसमें जिस तरह से गीत को फिल्माया गया है वो मुझे खासतौर से बेहद खूबसूरत लगता है।

हमारे एक श्रोता का कहना है कि जीवन रूपी नैया को पार तो सिर्फ एक खेवैया ही लगा सकता है और वो है हमारे प्रभु श्री राम, लेकिन ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो खुद अपना साथ देता है। इसलिए इस जीवन रूपी नाव को बड़ी समझदारी और सच्चाई से खेते जाइए और फिर हम पार हो ही जाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपने पापा की पोस्टिंग के कारण मेरा बचपन प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में बीता। प्रयागराज में यमुना जी के तट से संगम तक मैंने अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ कई बार नौका विहार का आनंद लिया, जो बेहद मनोरम लगता है। पिछले वर्ष दिसंबर में चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रामघाट पर पत्नी और बेटे के साथ मैंने नौका विहार किया है। इससे पूर्व भी चित्रकूट में कई बार हम लोग नौका विहार का आनंद ले चुके हैं। मजे की बात तो यह है कि आज के कार्यक्रम को पेश करने वाली भी वही है जिनका नाम चित्रकूट में और एक क्या कहें आपकी तारीफ के लिए सर आंखों पर। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि ये पंक्तियां जीवन के उस शाश्वत सत्य को रेखांकित करती हैं जिससे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। हम अक्सर जीवन को एक सीधी लकीर मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक अनिश्चित समंदर है जहां भंवर जिन्हें हम चुनौतियां कह सकते हैं और मजेदार जो असमंजस का पर्याय है का आना तय है। ये विचार हमें सिखाता है कि जब जिंदगी की नाव डगमगाए तो घबराने की बजाय अपनी स्वीकार्यता की पतवार को थामें और ज्ञान के मल्लाह पर भरोसा रखें, नैया पार लगी जाएगी। चलिए तो नौका विहार पर जब हम निकले हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म आवारा का गीत। क्या ये गीत आपकी लिस्ट में है? जरा खंगालिए। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और साथियों की, शैलेंद्र की बोल, शंकर जयकिशन की धुन।

हमारे श्रोता का कहना है कि नाव वैसे तो समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों की जीविका का प्रमुख साधन है, लेकिन फिल्मकारों ने नाव पर बेहतरीन गाने फिल्माए हैं। पाकिजा का चलो दिलदार चलो तो कश्मीर की गली का ये चांद सा रोशन चेहरा और जिस गली में तेरा घर, चिंगारी कोई भड़के, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो सुनते सुनते कभी मन भरता ही नहीं है। आज नौका में संगीत का सफर आनंदमय होगा ऐसा हम मानते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माँ जी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का कहना है कि इस कश्ती की भी अजब बात है, अक्सर दूसरों को पार करवा कर खुद पानी में ही रह जाती है, इंसान और नाव में बस इतना ही फर्क है। क्या खूब बात कही है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि नदी के किनारे घाट पर बैठकर चांदी से चमकती लहरों के बीच धीमे धीमे चलती नाव देखने का जो सुख है वो अवर्णनीय है। ये पल बिल्कुल ऐसा है जैसे दिन और ढलती शाम के बीच कोई मीठी सी बात हो जो सिर्फ शांत लहरों के बीच सुनी जा सकती है। नदी की लहरों पर नाव में बैठे हुए अपनी परछाई इस खूबसूरत पल को चुपचाप निहारती रहती है। सब कुछ सादा और प्यारा, पेड़ों की धुंधली सी दिखाई देती पंक्तियां, गीली घास की गंध अंधकार को चीरता हुआ नदी किनारे स्थित मंदिर का कलश, ये सब नदी के हृदय है। और चप्पू चलाता मां जी पानी के सुर से सुर मिलाकर पूरी कायनात को जैसे संगीत से भर देता है। बहुत सुंदर क्लासिक लिखी है आपने इबारत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रामायण में जब भगवान श्री राम जी केवट की नाव में जाते हैं तो पहले माता सीता जी को हाथ पकड़कर नाव में चढ़ाते हैं, यानी कि कोई भी यात्रा हो धर्म पत्नी को आगे रखकर उसके बिना यात्रा पूरी नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की जो इबारत है आध्यात्मिक चौखट पर लाने का एक अच्छा प्रयास किया गया है और इस भव सागर में विभिन्न प्रकार के भव जंजाल रूपी उर्मियों से ही हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार लगाने हेतु कुशल ही नहीं अपितु चतुर सेवक केवट जैसे मल्लाह की अपेक्षा की गई है। ये हर एक के हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार करते रहने का बहुत ही सरल उपाय है, किंतु इस दर तक भी कितने पहुंच पाते हैं, और वो भी जबकि हम केवल इतने शब्दों के बीच जीवन नैया पे ही उलझे रहेंगे, फिर मल्लाह के गुण और अवगुणों पर कैसे पहुंच पाएंगे। अरे भाई, इसके लिए हमें कुशल ही नहीं अपितु चतुर नाविक भी तो बनना पड़ेगा। बहुत सुंदर इबारत लिख रहे हैं हमारे श्रोता, हमें तो पढ़कर बड़ा मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि नैया जब पानी पर उतरती है तो लहरों से समझौता नहीं करती, उनसे रिश्ता बना लेती है, शायद इसलिए वो हर मुश्किल सफर को आसान बना देती है। किनारे पर खड़ी नैया सुरक्षित जरूर रहती है, लेकिन उसकी असली पहचान तो सफर से ही बनती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत तो सीधे तौर पर जीवन और अध्यात्म से जुड़ी है। जीवन की क्षणिकता, नश्वरता, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीने के साहस का प्रतीक है। मनुष्य जीवन एक कागज की नाव के समरूप है। मानव जीवन शरीर सांसारिक आशाओं का द्योतक है। जिस प्रकार कागज की बनी नाव का संसार रूपी सागर के अथाह पानी की अनंत गहराई में कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी क्षणभंगुर होता है। बहुत सुंदर आपने, आप सभी ने अपनी इबारत हमें लिख भेजी है। मन तो कर रहा है कि इन इबारतों

वो पढ़ते ही जाएं, पढ़ते ही जाएं, लेकिन अब हमें थोड़ा सा संगीतमय भी होना पड़ेगा। तो आपके लिए लेकर आए हैं हम फिल्म उपहार का गाना, मुकेश और साथियों की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। ये गाना भी आपकी लिस्ट में शामिल है, जरा खंगालिए। है

हमने आपसे सवाल किया था कि फिल्म सवेरा का जो गीत आपने सुना था ओ परदेसी, उसमें नायक और नायिका कौन बैठे दिखाई देते हैं नाव पर। आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिया, हम तो ढूंढ रहे हैं। खैर, आपने जवाब दिया कि नहीं, हमें तो जवाब देना पड़ेगा। मीना कुमारी और अशोक कुमार एक नाव पर अलग से बैठे हुए दिखाई देते हैं। और हमने ये भी पूछा था कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है, जिनका नाम हमने शैलेश बताया था। पूरा नाम है शैलेश मुखर्जी। अगर आपने सही जवाब दिया है तो हमें मिल जाएगा, तो हम जरूर उसको पढ़ेंगे। और अब हमने जो सवाल हमारे श्रोताओं से किए थे, श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आप लिखते हैं कि भाई मेरी लिस्ट में मुकेश जी के गीत बहुत ज्यादा हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, गीत संगीत में ही खो गए हैं और इस गाने में ही नौकायन में हो गए हैं। मां जी नैया ढूंढे किनारा, इस गीत से हमें बेहद मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं, कोई न कोई सबको लगता है प्यार, क्या कहना है इस गीत का। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नौका विहार तो बहुत बार किया है, पर पन्ना सफारी के दौरान कैन नदी में किया हुआ नौका विहार ताम्र याद रहेगा। साफ स्वच्छ पानी, नीचे तक स्पष्ट दिखाई देती रेत और पत्थर, साथ में चारों ओर घना जंगल, आह क्या ही खूबसूरत नजारा था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि केवट बड़ा चतुर और होशियार था, उसने प्रभु राम से कहा कि हम और आप दोनों एक ही हैं, मैं नाव से नदी पार करता हूं और आप भवसागर से पार करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चेन्नई, गोवा, थाईलैंड, इजिप्ट सभी समुद्र से घिरे हैं और सब जगह घूम के आई हूं, क्या बात है। थोड़ा सा बताते कैसा लगा आपको वहां घूमना, तो हमें भी अच्छा लगता, हम भी मन की आंखों से नौकायन कर लेते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कटी पतंग का जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद आता है और ये जो गीत आपने बजाया मांझी नैया, ये गीत बहुत ही प्यारा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी 14 गीतों की लिखी हुई इबारत में पहले नंबर पर लिखा हुआ गीत शामिल हुआ है, मांझी नैया ढूंढे किनारा, तो बधाई हो आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गाने हैं जो हमें पसंद हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बिहार से हूं जहां नदियों पर पुलों की बहुत कमी थी। हमारे जमाने में गंगा नदी पर एक ही पुल था, इसलिए सभी गंगा पार नावों से ही करते थे। पर मुझे गंगा की वो शाम की याद आ रही है जब मैं और मेरा दोस्त नाव पर यूं ही सवार थे। सूर्य भगवान अस्ताचल में प्रवेश कर चुके थे, आकाश में लालिमा छाई हुई थी और हम दोनों और मेरा नाविक बस इतने ही थे। तभी मेरे दोस्त ने गुनगुनाना शुरू किया, वो शाम कुछ अजीब थी। उस समय मैंने फिल्म खामोशी नहीं देखी थी, लेकिन वो गाना मुझे उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। और एक बात मैं आपको कहूं, हमारा अगला गाना भी यही है। हाँ चलिए थोड़े से और संदेश पढ़ लेते हैं, फिर आपको सुनवाते हैं फिल्म खामोशी का ये गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा गीत आपको याद है ना मंदाकिनी जी, याद तो है, लेकिन वो गीत आज हमने शामिल किया है कि नहीं ये तो अब आपको अंत तक कार्यक्रम में सुनना पड़ेगा। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार करना मुझे बहुत पसंद है। हम जब कश्मीर घूमने गए थे तब हाउस बोट में 3 दिन रहे और शिकारे पर बैठकर लेक की सैर की। वहीं चार चिनार नामक स्थल देखा। जहां भी घूमने जाती हूं वहां झील होगी तो नौका विहार जरूर करती हूं। केरल में पेरियार नदी में, नैनीताल के झीलों में, अरे वाह आप नैनीताल भी गई, महाबलेश्वर जैसी बहुत सी जगहों का आनंद मैंने लिया है, बहुत खूब। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मैं पहले आसाम में रहता था, तब एक नौका में बैठने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। उस समय डर भी लगा, सोच रहा था कि उस समय पता नहीं नौका कैसे पार लगेगी नदी पर, साथ में और भी व्यक्ति थे, हौसला बना रहा था। पर उस समय मेरे मन में एक सवाल उठा कि पानी तो बहुत ज्यादा है, इतना जैसे दुनिया में पानी ही पानी है, जमीन तो दिखाई नहीं दे रही, इतना पानी तो शायद पूरी दुनिया को ही डुबो देता है, ऐसा मुझे डर लग रहा था। वही एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी जगह मैंने घूमा है, अभी 2-1 साल पहले ही भेंट द्वारका जाते समय नए समुद्री पुल के उद्घाटन से पहले स्टीमर से समुद्र पार कर बेट द्वारका गए थे और कन्याकुमारी में भी स्वामी विवेकानंद स्मारक स्टीमर से गए। भले ही अपने गंगा जी में नाव पर सवार न हुए हो, लेकिन अमरकंटक नर्मदा नदी पर जाना चाहते हैं। अच्छा, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार का सबसे अच्छा गाना मुझे लगता है फिल्म सफर का, नदिया चले चले रे तारा तुझको चलना होगा। बहुत ही प्रेरणादायी शब्दों से इस गीत को लिखा है, आदमी कितना ही हताश परेशान हो उस गाने को सुनकर नए उत्साह से आगे बढ़ने की और कूच कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आवारा फिल्म का गाना कम ही सुना है, सिर्फ देखते समय ही सुना है, कयास लगाना कठिन है लेकिन गाना बेहद सुंदर है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म खामोशी का गीत किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार साहब की बोल है, हेमंत कुमार साहब की धुन।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वो शाम कुछ अजीब थी। एक गाना जो अभी आप सुना रहे हैं, वो शाम कुछ अजीब थी मेरा सबसे पसंदीदा नौका विहार का गाना है, जहां प्यार की उत्कटता और विषाद को एक साथ दिखाया गया है और सिर्फ चेहरे के हाव भाव गीत के अनुपम शब्दों को सजीव कर रहे हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दिल ने फिर याद किया, फिल्म का शीर्षक गीत का सुंदर नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच नाव का दृश्य मन मोह लेता है। रहमान, धर्मेंद्र और नूतन की प्रभावशाली भूमिका वाली ये जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि परदेशियों से ना आंखियां मिलाना वाला गीत मुझे बेहद पसंद है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि करीब 2000 के आसपास मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स आते जाते और दूसरे दिन आपके हॉल के कार्यालय के पास के गोराई बीच से एसएल वर्ड जाना हुआ था। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुनीला सफर में अभी तक जितने भी गीत बजे हैं उनमें से तो एक भी हमारी लिस्ट में नहीं है। अरे फिर आपकी लिस्ट में कौन से गाने थे? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म मिलन का गीत मुझे बेहद पसंद है, सुनील दत्त

और नूतन जो नाव में बैठकर गाने गाती हैं वो गाना बहुत ही पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप लोग जो गीत सुनवा रहे हैं वो बहुत ही बकवास गीत हैं, एक भी ऐसा गीत लोकप्रिय नहीं सुनवाया है जिसको सुनकर मन खुश हो। जब हमने विषय सुना था तब लगा था कि एक से बढ़कर एक मनभावन गीत सुनने को मिलने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल बेकार चयन किया गया है। क्या कहें आपको, आपकी पसंद और हमारी पसंद शायद नहीं मिलती होगी, यही कह सकते हैं, है ना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही शानदार है और वास्तविकता से जुड़ी भी है। है कौन यहाँ पर जिसकी जीवन रूपी नैया दुखों रूपी तूफानों से न डगमगाई हो, लेकिन जिसने भी सच्चे मन से अपने परम पिता परमेश्वर को याद किया उसका जो है उसकी डगमगाती नहीं है सही हो गई है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में कागज की नाव बनाते थे, अब नाती के लिए बनाकर फिर से बचपन को जी लेते हैं, क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप बीच में जो चिंगारी कोई भड़के वाली गीत की धुन सुनवा रही है उसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो आज जो गीत आप सुनवा रही हैं वो बेहद पसंद आ रहे हैं और आप ही के नाम पर आधारित नदी पर बात हो रही है, लेकिन हम अगर 1986 की बात करें तो रेलवे सर्विस की परीक्षा देने के लिए कलकत्ता गया था। आने जाने का रेलवे पास रेलवे डिपार्टमेंट ने ही हमें दिया था। परीक्षा देने के बाद भी वो पास 3 दिन तक मान्य था। इस दौरान मैंने कलकत्ता और हावड़ा शहर घूम लिया। इसी दौरान हावड़ा ब्रिज के नीचे बहती हुगली नदी में नाव की सवारी करने का मौका मिला जो बहुत ही रोमांचित रहा। इसी तरह ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर में नाव की सवारी करने का मौका मिला। इसके अलावा दिल्ली में यमुना नदी और कर्तव्य पथ इंडिया गेट के पास बहती हुई धाराओं में भी नैया में सफर करने का मौका मिला है और उम्मीद करते हैं कि आज ये सभी गाने उन पुरानी यादों को ताजा कर देंगे। बिल्कुल ताजा तो कर ही रहे हैं, आपको लग ही रहा है कि आज हम जो गीत सुनवा रहे हैं आपको अपने उन बीते दिनों की याद आ गई है ना। चलिए सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम कटी पतंग, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन की धुन। आपकी लिस्ट में एक गीत था ना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि दो लफ्जों की है कहानी ये गाना और कहां ले चले हो मुसाफिर दुर्गेश नंदिनी का, ये दोनों गाने अभी तक नहीं बजे क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने, दो लफ्जों की है कहानी तो हमने इसलिए नहीं बजाए कि हमने सोचा कि फिर आप श्रोता शिकायत करेंगे कि भाई कितनी बार तो ये गीत और सभाओं में बज गया है और आज फिर इस गाने को मंदाकिनी जी लेकर आ गई है, तो हमने उस गाने को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया। हाँ, दुर्गेश नंदिनी का गाना तो शामिल नहीं हुआ, चलिए फिर किसी और कार्यक्रम में इस गाने को हम लेकर आएंगे। ठीक है, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरे वाह क्या बात है, दो जासूस का गीत पुरवैया लेके चलूं वाला, ये तो अब अगला गीत है आपकी पसंद का जो आप सुनने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर से रोज नदी या समुद्र के किनारे दूसरे किनारे डेली अप एंड डाउन करते हैं, नौकायन से सफर करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि लोग मुंबई में ट्रेन से सफर करते हैं, बसों से सफर करते हैं, ऐसे नौकायन लोग करते हैं, रोज नौका के द्वारा सफर होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम कनाडा गए वहां गांव नाव में बैठे किसी जन्नत से कम नहीं लगा, हम उसे कैसे बयां करें समझ नहीं आ रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गाने आप सुनवा रही हैं हमें तो ये गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गाने प्रस्तुत कर तीव्र गति से कार्यक्रम का संचालन प्रशंसनीय है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज वो शाम अजीब हो न हो लेकिन सुरीले सफर की दोपहर बड़ी ही सुंदर हो गई है नौका विहार करते हुए छोटी बहना के संग, क्या बात है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखती है कि सिर्फ मुझे ही फील हो रही है आज, हर गीत सुन कम रही हूं फील ज्यादा कर रही हूं, हूबहू नाव वाला दृश्य जहन में और जल तरंग की ध्वनि गूंज रही है जैसे तिलस्मी इबारत है ये, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना कश्ती का खामोश सफरिया आपने नहीं आज लिया, बिल्कुल नहीं लिया, अगली बार किसी कार्यक्रम में इसे जरूर शामिल करेंगे। वहीं श्रोता लिखते हैं कि मैंने कन्याकुमारी मथुरा थाईलैंड फुकेट दुबई यूएसए नायगरा फॉल पटना से गंगा जी और चंदोद में नर्मदा जी में सभी जगह नौका विहार किया है और मुझे सबसे अच्छा नायगरा फॉल बहुत ही पसंद आया है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म नैया का गीत लेना था तेरे आने से सज गई ये टूटी फूटी नाव, बिल्कुल सही कहा आपने, इतने सारे गीत हैं किसे लिया जाए किसे छोड़ा जाए समझ नहीं आता है, लेकिन आज हमने उन गीतों को याद किया, ये क्या कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर।

लता मंगेशकर, शैलेन्द्र सिंह और साथियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था रविन्द्र जैन ने। इस गाने के साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम की अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, ये पूछते हुए कि कैसा लगा आपको आज का ये नौका विहार। अच्छा लगा ना? तो चलिए, याद रखिएगा इस नौका विहार को, मन में संजो कर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये नौका विहार आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर कार्यक्रम से, मंदाकिनी जोशी को दे दे इजाजत। फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार और आरती तुम्हें भी नमस्कार। हमारी बहुत सारी सखियां इस समय में सुन रही हैं।
1: बिल्कुल चंचल, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार।
0: अब बताते हैं कि भाई आज किन विषयों पर बात होने वाली होगी। तो जैसा हमारे सभी श्रोता जानते हैं, गुरुवार का दिन है और होता है कहानी

0: पद्मश्री की, एक ऐसी महिला जिसने कुछ ऐसा काम किया है जिसे पूरे देश दुनिया में जाना गया, उन्हें मिलता है पद्मश्री, उनकी हम बात करेंगे। तो वो कौन है?
1: वो है बसंती देवी बिष्ट, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला जागर लोकगायिका हैं।
0: बिल्कुल, इनके बारे में आज बातचीत होगी।
1: हाँ।
0: और आज एक खास दिन भी है, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी।
1: बिल्कुल, और आज मुझे कुछ कहना भी होगा, तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा क्या रहा आपका।
0: बिल्कुल, सबका कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा,
1: क्योंकि शॉपिंग सभी करते हैं ऑनलाइन।
0: हाँ।
1: तो आपने अगर शॉपिंग करी है तो उसमें आपने ऐसी क्या चीज ली कि आपको पछतावा कि अब हम कभी नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे?
0: तो इस बारे में जरूर अपने अनुभव हमारे साथी हमसे साझा करेंगे, और कुछ उपयोगी टिप्स होंगे जो हमारी सखियां हमें बताएंगी कि खाना बनाते समय कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत उपयोगी हो सकती हैं। भाई, खाना अगर जल्दी पकाना है तो क्या, तुरंत घर पे मेहमान आ गए तो फटाफट क्या बन सकता है, तो इस तरह के जो
1: भी क्या चीज अगर कुछ कम ज्यादा हो गया है तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात।
0: इसके अलावा लंबे समय तक अगर आपको सहेज कर रखना है किसी खाने पीने की चीज को, चाहे वो पकी हुई है या कच्ची है, उसके बारे में भी उपयोगी टिप्स हमें सखियां बता सकती हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये सारी बातें करेंगे विस्तार में, लेकिन पहले गाना सुन लें।
1: हाँ बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: तो हम बात कर रहे हैं भाई
1: बसंती देवी बिष्ट की
0: जो है उत्तराखंड की पहली जागर गायिका। और हम बता दें कि इनका जन्म हुआ 1953 में उत्तराखंड के चमोली जिले के लुबानी गांव में। और उनकी माँ बहुत अच्छा गाया करती थी और अपनी माँ के साथ जो वो जो गीत सुनते सुनते बड़ी हुई तो गांव में जो मेले लगते थे जो त्योहार होते थे तो माँ के साथ वो गाने भी गाया करती थी। और इसी दौरान गाते गाते उन्हें भी इन गीत से उस संगीत से जो लोक संगीत था वहां का उससे प्यार होने लगा। और भाई जब आपके खून में कोई चीज बस जाती है ना तो जब आप उस चीज को गाते हैं तो बड़ी दिल से आवाज निकलती है।
1: बिल्कुल। और वो पूरा जो माहौल था ना वो बचपन से उनको मिल गया था और गायन के इस प्रेम की वजह से उन्हें पारंपरिक जागर गायन शैली को नई पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जागर गायन करने वाली पहली प्रमुख महिला कलाकार मानी जाती हैं। ये जागर कला उत्तराखंड की लोक परंपरा से जुड़ी हुई है जिसमें देवी देवताओं और लोक देवताओं को याद किया जाता है।
0: और आरती ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो जागर शैली परंपरागत रूप से पुरुष पहले प्रस्तुत किया करते जैसे आपने भी कहा ना कि वो पहली महिला गायिका है तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आ सके ना इसीलिए इस परंपरा को तोड़ने वाली बसंती देवी ही रही। और तब से लेकर आज तक वो लोक गायन की जो परंपरागत शैली है यानी कि जागर गायन की हम बात कर रहे हैं इसको संरक्षित करने के प्रयास में लगी हुई हैं वो और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इसके भी प्रयास कर रही हैं। और उनके बारे में एक बात और भी गौर करने वाली है कि पांचवी कक्षा की जिला बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली थी वो पहली छात्रा।
1: मतलब बहुत कुछ उन्होंने पहला काम किया है तो और उन्होंने आगामी 3 वर्षों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह 20 रूपये की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी क्योंकि उच्च विद्यालय उनके घर और गांव से बहुत दूर था और गांव के स्कूल में पांचवी कक्षा से आगे की जो पढ़ाई होती है वो नहीं होती थी और यही मुख्य कारण था कि वो आगे की पढ़ाई अपनी जारी नहीं रख पाई थी।
0: और फिर क्योंकि पहले के जमाने में भी बच्चियों के विवाह भी छोटी उम्र में हो जाया करते थे गांव में खासतौर पर ऐसा हुआ करता था तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र थी तो उनका विवाह हो गया और तोपखाने के एक सैनिक में जो थे उनके साथ उनका विवाह हुआ और जीवन का अधिकांश समय एक गृहिणी के रूप में ही उन्होंने अपना बिताया। पेशेवर संगीत करियर की शुरुआत उन्होंने की जब वो 40 बरस की हो गई थी और अपने पति के साथ जब वो जालंधर गई तो वहां उन्होंने एक प्राचीन कला केंद्र में फिर से एक बार संगीत सीखने की शुरुआत की और उनकी बेटी ने उनके शिक्षक के तौर पर हारमोनियम बजाने की शुरुआत की।
1: हाँ उनकी बेटी के शिक्षक से उन्होंने उन्हें सिखाया था बजाना तो यहीं से उनके करियर की शुरुआत भी हुई। बाद में उन्होंने भजन फिल्मी गीत त्योहारों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाना शुरू किया। इसके बाद उनके पति सेवानिवृत्त हो गए और परिवार देहरादून में जाकर बस गया। बाद में उन्होंने 1996 में नजीबाबाद स्थित अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया यानी वो रेडियो से भी जुड़ी हुई थी
0: और वो जुड़ी हुई नहीं वो ए श्रेणी की
1: कलाकार थी। देखिए मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया
0: और साल 1996 की हम बात कर रहे हैं तब वो पहली महिला प्रधान भी बन गई अपने क्षेत्र की। और कुछ समय के बाद जब उनको लगा कि बचपन में अपनी माँ और गांव के अन्य बुजुर्गों से जो संगीत की अनूठी शैली की जो प्रतिभा उन्हें मिली है जिसे जागर गायन कहा जाता है तो उन्होंने महसूस किया कि लोग इसको गा ही नहीं रहे इसे भूल रहे हैं और शास्त्रीय गीतों को खोज करने के लिए अपनी पुरानी धुनों में प्रस्तुत करने का दायित्व इन्होंने फिर संभाल लिया।
1: जी और बसंती देवी बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे धोखेबाज दगड़िया न्योली प्यारी सुमना दाजी बॉर्डरा और फोन करना ओ सियाली साली रुकमा पारा भीड़ा जादियो और देवारा जारेजू और भी बहुत सारी हैं।
0: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं तो वो जरूर जानते होंगे इन पंक्तियों को जो तो आपने बताई भी कि उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं वो इस बारे में भी जानते होंगे।
1: ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ है
0: जी और बसंती देवी की जो उपलब्धियां हैं उनके जो पुरस्कार हैं अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मातोश्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बात लोक धुनों की

0: बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़ी से हम कष्ट लेते बाजार जाते और वो चीज खरीद लाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बाजार जाके उस चीज को छू के देखना, पकड़ के देखना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना उस दुकानदार से, वो एक अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, और पूरी दे रखी है भी कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है।
0: कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।
0: हाँ, और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर था ना, वो फ्री की चीज मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो चीज हमें सिंगल ही दे दी गई। तो इस तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज्यादा होती है, तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू है वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है मेरे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देखकर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
0: बिल्कुल, हमें किसी ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती है, अब दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती हैं जिन्हें सेकंड या थर्ड में कई लोग निकालते हैं। तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता और इस तरह की जो प्रलोभन है उनमें फंसकर हम गलत चीज।
1: बिल्कुल, और कई बार ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती, या रंग एकदम अलग होते हैं उससे।
0: हाँ।
1: तो इस तरीके की चीजें भी काफी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता, तो इस तरीके के फ्रॉड काफी होते हैं।
0: रंग की तो जब आपने बात कही, तो मान लीजिए आपके मेरे दोनों लोगों के हाथ में अलग अलग फोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती है ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग हमें दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं, और किसी भी तरह की चीजें हम खरीद सकते हैं ना। तो हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं खरीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही हमें खरीदने पड़ते हैं।
1: और लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मांगा है कई बार पौधे जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में से वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं वापस नहीं हो सकता है ये।
0: इसी बात पर देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं, कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको पढ़ना
1: चाहिए
0: ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
0: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं, इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज, चमचमाती चीज जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है, और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं, पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या खरीदना है, उसकी जरूरत है भी कि नहीं है, इस तरह से करें और पढ़ लें पहले पूरी जो चीजें दे रखी हैं कि वो क्या चीज है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना हो। ताकि
0: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता

0: आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते हैं।
1: बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं।
0: और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई

0: ताकि हम तोहफे में देखने देने के लिए कोई चीज ले रहे होते हैं, हमने मंगाई बिना खोलकर भी नहीं देखा और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज गई है तो वो जब वो शिकायत करते हैं या नहीं भी करते सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
1: बिल्कुल, और अच्छा भी नहीं लगता है ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले तो जरूरी है हम बेहतर होगा कि जितना ज्यादा हम जा सकें बाहर वहां से खरीदें।
0: बिल्कुल, देने वाले की नीयत भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था। इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन लें।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

आरती, ये सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें खरीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है।

0: सेल देखकर खरीद लिए जाती हैं चीजें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है।
1: और एक और श्रोता जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ा में सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देखकर घबराइए मत, अपितु उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजाकर ही करिए। जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है। और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है। ऐसे ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए।
0: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है, कई बार लोगों के पास काम के चलते समय नहीं होता, त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये काम करते हैं। और बहुत सारी चीजें अब ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है, घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध दालें सब्जियां ऐसी चीजें ही क्यों ना हो, तो
1: बिल्कुल
0: सोच समझ कर ही।
1: और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जो ऐसी चीजें जो इतनी जरूरी नहीं भी है ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं, तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की चीजें पकी हुई जैसे उन्होंने बताया वो चीजें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन। और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज के कपड़े, खराब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षा यानी रिव्यूज जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफंड की जो नीतियां हैं, इन सब चीजों को एक बार जांच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है। यहां ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
1: बिल्कुल। और चंचल देखो एक अंतराल का समय हो गया
0: जी।

विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।

0: याद रखोगे कि भूल जाओगे नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ कपड़े भी जिस साइज के मंगवाए थे उसे साइज में आए ही नहीं। जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी। कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है।
1: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ ये ऑनलाइन शॉपिंग कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा। मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और व्हाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान भी धुल गए।
0: तो वैसे एक हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
1: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन पर काम करने वाली स्टाइलिश पेन, इस तरह की कुछ चीजें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और जैसे ही इन चीजों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीजों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी किया करें, और जैसा कि आपने बताया था कि उनकी पत्नी है वो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करती हैं, बच्चे हैं वो कर लेते हैं।
0: बहुत सारी चीजें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीजें खराब ही आती हैं।
1: लेकिन आज हम फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं
0: जो
1: कभी पछतावा हो।
0: और एक और हमारे

0: होता है जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूं तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया। एन समय पर फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए। इससे अच्छा बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदें, यही बेहतर होगा कि उनको दो बार पैसे खर्च करने पड़े।
1: बिल्कुल, आप बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीजें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा। और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो है, गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है और ये सिख धर्म के पांचवें गुरु माने जाते हैं और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें सजा सुना दी और उन्हें बहुत सारी यातनाएं देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
0: जी, बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
1: और आज ये जो दिन होता है ना, इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहां पर शबद कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे पानी के जो प्याऊ होते हैं वो लगाई जाती है और लंगर यानी कि जो भोजन लंगर होता है उसकी व्यवस्था की।
0: बिल्कुल, और लंगर का खाना चंचली इतना अच्छा, इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहाँ रोज जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं
1: और वो बहुत श्रद्धा से पकाया गया भोजन होता है। वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो प्रसाद।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि गीत सुनने पहले
1: गीत सुन लेते
0: बिल्कुल गीत सुन लेते हैं।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ

0: मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो भाई खाना बनाते समय कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे पास, हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर
4: बहुत कुछ लिख डाला है भाई
3: जी।
4: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं। और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना जरूरी है और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
3: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा ये जो कार्यक्रम है,
4: चंचल जी ऐसा मत कहिए क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
3: लेकिन मैंने कहा अमूमन ही
4: होता। हाँ, ये तो है
3: ना। तो हमारे जो पुरुष होता कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही
4: हूं। बिल्कुल बिल्कुल।
3: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
4: अच्छा।
3: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
4: जी। बिल्कुल।
3: चाय की एक बूंदी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी टिप है,
4: बहुत जरूरी।
3: और ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वहीं पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते
4: तो है।
3: तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि भाई चाय की बूंदी गिरी है तो वो ना हो,
4: एकदम साफ सुथरा किचन मिले। बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं। तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं। और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है। और आटा गूंदते समय गुनगुने पानी या थोड़े से दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
3: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर पालक इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटें, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं तो ऐसा ना करें, इसीलिए इन्हें मध्यम आकार में काटें। और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें, इससे वो काले नहीं पड़ेंगे। और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है।
4: अरे वाह क्या बात है। और एक हमारी श्रोता है जो बहुत ही, उन्होंने तो बहुत ही मजेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, न गाना आया, न बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया। तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं,
3: नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
4: बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
3: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज कम या ज्यादा ना हो जाए।
4: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि प्याज को

0: अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
1: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए। इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ डालकर मक्खन को तुरंत रखें और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है।
0: बिल्कुल। और चंचल जी, हम एक संदेश को सुन लेते हैं, इसके बाद हम बात करें आगे।
1: जी,
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं है तो पूरे हाथ पर सूखा आटा लपेट ले और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहां के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल, और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
0: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन हैं उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लें।
1: बिल्कुल।

0: भाई ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का। तो आरती श्रीवास्तव को और चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बम बम मकाक बम बम मकाक बम बम मकाक बम बम मकाक बम बम कक कक अरे बम बम कक कक।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
0: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
3: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
0: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
4: सखी सहेली।

0: ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: पर।
1: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा बच्चा।